0: और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: फुल कहारी उन्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पादे मोरी। ससिका जी मैं तो अड़ा अपना गिप्पी करे बात। तुसी सुन रहे हो हांजी रेडियो।
5: हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस.

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

नहीं कर सकते। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अच्छा दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो, हां जी 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: वो आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो।
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: हां जी हां जी, ओए हां।

हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old G Long Road Hoppers Crossing वेरीबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: आवे सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
6: कह रहे हो?
5: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: कह रहे हो?
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
8: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: ਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई तुहाड़े नेड़े सिनेमा घरां च।
5: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
6: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
5: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
6: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
5: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा
5: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
8: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: से दमदार और रोमांचक कहानी।
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: वैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो। सरपंच।
5: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
4: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: हाय दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू लिसनिंग टू रेडियो हांजी

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल शुभ बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो हांजी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी रेडियो हाँ जी रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यो हाँ जी 1674।
1: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाँ जी लिसनर्स।
0: रेडियो हाँ जी 1674।
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन।
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
7: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
10: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो सरपंच।
11: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
10: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
12: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
9: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
0: रेडियो हाँ जी 1674।

रेडियो हाँ जी 1674 AM आज 6 जुलाई 2026 भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जान दियां खबरां लेके आए। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करते हैं। आस्ट्रेलिया दियां खबरां दे विच बहुत कुछ हो वापर रहा दुनिया भर के अंदर और आस्ट्रेलिया नूं किवें प्रभावित कर रहा हो सब। खास तौर दे उत्ते चीन दे द्वारा पैसिफिक समुद्रां दे वल दागी गई मिजाइल आस्ट्रेलिया नूं किवें इह खबर प्रभावित कर रही अगे चल के जाणांगे। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे विच ओह खबर जिस तों भारत बचदा रहा है। भारत अपने कूटनीतिक संबंधां नूं बरकरार तां रखना चाहुंदा है इजराइल दे नाल, पर ईरान नूं भी नहीं दसना चाहुंदा। अजय दे विच हुण इजराइल दे प्रधानमंत्री जे खुद ही इह कह दन कि जे दोस्ती होवे तां भारत वर्गी, तां फिर हुण ईरान दे अगे की मूंह लैके जाएगा भारत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस नूं एक नसीहत का जवाब दिंदिया होया भारत का जिक्र कर दिता। नेतन्याहू ने दावा किया कि भारत के विच उन्हां नूं प्यार करन वाले बहुत सारे लोग ने और भारत तो हमायत मिलती रहती है। दरअसल सारा मामला की तुहानूं दस दिंदे, जून महीने के जदों अमरीका ते ईरान के दरम्यान जंगबंदी नूं लैके गलबात चल रही थी उदों इजराइल ने लबनान के उत्ते हमले कर दिते सी। ईरान चेतावनी दे रहा है कि जे लबनान के उत्ते हमले होंदे रहे तो अमरीका के नाल जिहड़ी गलबात हो रही है वह बिगड़ जानी है। अजे च डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वैंस के हवाले के नाल इजराइल तक एक सुनेहा भेजा। जेडी वैंस ने बड़ा सख्त तरीके दे नाल कहा कि टल जाओ, इजराइल नूं कहा इदां करना नहीं चाहिए, अमरीका तो बिना पुछे तुसीं हमला ना करो, खास तौर दे उत्ते अजिहे समय च जदों अमरीका ते ईरान की संधि हो रही है। इजराइल का कहना सी कि संधि तो अमरीका ते इजराइल च ईरान च हो रही है, जबकि इजराइल का इस की लेना देना। ट्रंप ने लबनान के उत्ते इजराइली हमलों नूं गैर जरूरी दसिया। अमरीका का शक सी कि जेकर इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान के नाल सीजफायर का समझौता विचाले लटक जाएगा तो अमरीका की साख नूं भी नुकसान पहुँचेगा, जिसके लिए अमरीकी राष्ट्रपति तल्लो मछी हो रही सी। ट्रंप के बयान की तरफ तो ईरान की जड़ी नाल चल रही अमरीकी गलबात थी उस दे विच इजरायली कैबिनेट के कुछ मैंबर ने आलोचना कर छड़ी ते कहा कि ईरान इजराइल दे लई सब तो वड्डा खतरा है ते हुण अजिहे दे विच इजराइल दा पक्का दोस्त भी हुण इजराइल दे नाल नहीं खड़ा बल्कि उन्हां नूं वार्निंगा दे रहा। नेतन्याहू ने भी कहा कि ट्रंप दे नाल उन्हां दे चंगे रिश्ते ने, पर इहदा इह मतलब नहीं कि ट्रंप की हर गल दे नाल ओह सहमत हो जाणगे। उन्हां भी कहा सी कि उन्हां दा जदों जी करेगा ताहो ईरान दे उत्ते परमाणु हथियार ना हासिल करन दे लई फिर तो दबा पाणगे। अजय दे विच 18 जून नूं जेडी वैंस ने वाइट हाउस दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च एक कह दिता कि पूरी दुनिया च सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कल्ले ऐसे नेता ने जिन्हां ने इजराइल दे नाल अपनी हमदर्दी जताई सी, ते जे हुण इजराइल ट्रंप दी गल वी नहीं मनदा तां उहनां वर्गा नागवार कोई देश हो नहीं सकदा। दुनिया दे सब तो ताकतवर देश दे नेता दी गल तुहानूं मननी चाहीदी है। उन्हें यह भी कह दिता सी कि जे मैं इजराइली कैबिनेट का मैंबर हुंदा तां शायद मैं दुनिया च बचे अपने आखिरी इकलौते ताकतवर दोस्त दी गल नूं अणगौलियां करदे आ कोई भी जनतक हमला ना करदा। फॉक्स न्यूज़ दी एंकर ने जेडी वैंस दे इस बयान दा जिक्र करदे होए नेतन्याहू तों उन्हां दी हुण प्रतिक्रिया पुछी। हुण ताज़ा मामले दे विच अपडेट यह है कि नेतन्याहू ने कहा कि मैं जेडी वैंस की तो इज्जत करदा, मेरे उन्हां नाल चंगे रिश्ते ने, पर इहदा मतलब यह नहीं कि मैं उन्हां दी भी हर गल दे नाल सहमत हो जा। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की भी तारीफ कर दी ते कहा कि अमरीका के किसी भी राष्ट्रपति के इन्ना करीब वो कदे नहीं रहे, अमरीका ही नहीं बल्कि साढ़े दूजे भी दोस्त ने। उन्हें कहा कि भारत हुण 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश तो सानू बहुत हमायत हुंदी है, भारत के प्रधानमंत्री मैनू चंगी तरह हमायत दिंदे ने, उत्थों दे लोग सानू सोशल मीडिया से मैसेज भेजते हैं। उन्हें कहा कि कई देशों के विच इजराइल की आलोचना करन दा एक फैशन जिहा बन गया सी, इस दे लई मीडिया जिम्मेदार हो सकता है। खैर अगलियां खबरां दे वल वधीए ते ईरान तो ही खबर है जिथे ईरान दे सुप्रीम लीडर मौस्तफा खामनेई अपने पिता दे जनाजे दे विच भी नज़र नहीं आए। अंदाजे लग रहे सी कि उह इस जनाजे च जनतक तौर दे उत्ते पहली बार नज़र आ जाणगे, पर एतवार दे दिन हज़ारां लोग आयातुल्ला अली खामनेई नूं शरधांजलि देण दे लई तहरान पहुंचे सी। इस दरमियान ईरान दे सिखरले नेता मौजूद रहे ने। खामनेई दे बाकी तीन बेटे भी मसूद, मुस्तफा ते मैसम तीनों एतवार दे दिन इस रस्मां च शामिल होए, पर इस वक्त खामनेई दे चौथे बेटे और जिहड़े कि सिखरले लीडर भी ने मौजूदा समय च मुस्तफा खामनेई
ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸੂਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮੈਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਮਸੂਦ ਪੈਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮਦ ਵਾਹਿਦੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਬਦਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਆਯਤ ਅਲੀ ਅਲੀ ਖਾਮਨਈ ਦੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਮਨਈ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਸੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜ਼ਾਫਰ ਸੁਭਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। 97 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ

हमारा क्या है, हमारा क्या, हम आशिक हैं और आशिक भी ऐसा आशिक होगा ना तुम्हारा।

0: Alfa.
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया।
5: की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: और जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
9: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਸਰਪੰਚ।
10: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
9: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
11: रेडियो हां जी 1674 AM।

0: रेडियो हाँ जी 1674 एम ते प्रोग्राम डीप टॉक शो लेके हुए हैं जी हाजर। और गल अज दे दिन नेरो प्लास्टिसिटी दी चल रही हैगी है। प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कुछ चीज़ा नहीं होंदिया, दो अड्ड अड्ड चीज़ा होंदिया ने। जिदा मेरा दिमाग ते डॉक्टर संदीप कौर होरां दा दिमाग फर्क हैगा। संदीप जी वेलकम, की हाल चाल ने जी?
1: मैं ठीक हाँ जी, तुसी दसो।
0: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। जेड़ा इलास्टिसिटी दी गल मैं कर रहा सीगा कि जिदा दिमाग जिदा आप जिन्ना स्ट्रैच करिए जिन्ना खिचिए उन्ना वरत्या जाता उन्ना काम करता है। एक चीज़ मैनू दस्यो, आ ठीक है तुहाडियां गल्लां सारियां मैं समझ आ रही है ने और स्रोतियां नू भी समझ आ रही है कि किस तरीके दे नाल फंक्शनल ते स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी काम करती है। हिंदी फिल्मों के इंग्लिश फिल्मों के एक चीज़ बड़ी आती हैगी है कि वह फलाने बंदे का एक्सीडेंट होया तो एक्सीडेंट तो बाद याददाश्त चलेगी, फिर वो याददाश्त चलेगी, उन्होंने बंदे सारे भुल जाते हैं पर शब्द जरूर याद रहते हैं, वह गल करनी जरूर याद रही है। इदा नहीं कि बंदे की याददाश्त गई तो वह कंप्लीटली वाइप आउट हो गया कि उन्होंने बोलना तक नहीं आ रहा, वो मतलब जीरो कंडीशन दे विच चला गया, ऐदा नहीं है। सर्टन चीज़ा भुल जाता हैगा ये जिहड़ी हैगी, और फिर उस तो बाद चलो खैर हिंदी फिल्मों से थोड़ा जा ओवर द टॉप हो जाता है कि फिर उन्होंने कुछ यह जहाँ याद आता सीन तो उन्होंने फिर सारी मैमरी बैक हो जाती हैगी है। फ्लैशिज कह लें होंने, बहुत सारे लोगों को फ्लैशिज रह जाते होंगे ने याद जो मैमरी जान लगती हैगी है या जो इस किस्म दियाँ बीमारियां होंदिया है। बट फिर भी जिमें इफ इट मेक सेंस तो संदीप जी यू थोड़ा जा होर सिंपलीफाई करके दसोंगे कि केड़े ऐसे फैक्टर्स है जिहड़े इन्फ्लुएंस करते है दिमाग नू, दिमाग दे नाल जुड़िया हुई एक्टिविटीज़ नू।
1: हाँ जी मतलब जिहड़े फैक्टर्स दी जदों असीं गल कीती आपां वैसे सुणदे आं अजकल आपां वीडियोज़ च बहुत सुणदे आं कि हैल्दी खाना खाओ, सौवो टाइम ते वह सारा कुछ है ना, पॉजिटिव चेंजेस, मोटिवेशनल स्पीकर्स जिहड़े हैं बहुत बोलदे इदां दी चीज़ां है ना, और किसी हद तक सही भी हैगियां है क्योंकि जिहड़ी है साडा एक्सपीरियंस हैगा जो साडा स्लीप पैटर्न आ जां असीं किन्ने एक्टिव आ अपने लाइफ स्टाइल दे

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा वे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: Thank you, Manat.
1: Thank you. Have a very great, awesome, brilliant day. Bye.
2: Bye, bye.
0: Awesome, blossom day. Thank you. Thank you. Thank you. The next Saturday, Nalaya Teg. Sashrikal Teg. Tusi on a row.
3: Sashrikal, Uncle Ji. Sashrikal, Auntie Ji.
0: Sashrikal Teg Ji. Ki hala?
3: Main badhiya tunda ki hal chal
2: hai. Sada bhi bahut badhiya.
0: Ki karde si?
3: अंबर
0: ते लाही सुते पे है ना
2: ठंड है ना
0: इया इया वाले सुते पे सारे
3: हां जी
0: की सुनाओगे फिर
3: आज मैं सुनाऊंगी एक बात
0: हाँ जी
3: केरी चीज होनी है जेरे खोल लता है नहीं पर फिर भी सारे दिन बाबा ना भजदा
0: लता है नहीं फिर भी बाबा ना भजदा
3: हाँ जी
0: ओके लता है नहीं

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारे।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
2: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
5: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
3: हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट choice.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: इन चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: रेडियो हाँ जी 1674 एम ते प्रोग्राम डीप टॉक शो लैके हुए हैं जी हाजिर। और गल अज दे दिन नेरो प्लास्टिसिटी दी चल रही हैगी है। प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी, यानी कि प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी कुछ चीज़ा नहीं होंदिया, दो अड्ड अड्ड चीज़ा होंदिया ने। जिदा मेरा दिमाग ते डॉक्टर संदीप कौर होरां दा दिमाग फर्क हैगा। संदीप जी वेलकम, की हाल चाल ने जी?
1: मैं ठीक हाँ जी, तुसी दसो।
0: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। जेड़ा इलास्टिसिटी दी गल मैं कर रहा सीगा कि जिदा दिमाग जिदा आपां जिन्ना स्ट्रैच करिए जिन्ना खिचिए उन्ना बरतिया जांदा उन्ना काम करता है। एक चीज़ मैनूं दस्यो, ठीक है तुहाडियां गल्लां सारियां मैं समझ आ रही हैगियां ने और स्रोतियां

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

ग्रोवर्स वीट ग्रोवर्स हांजी 1674 ये नहीं है 71-72 ये है 1674 ये है 1674 सुनते रहो हांजी AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: Is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM कीप लिसनिंग

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आज प्यार की होड़ी
3: दिल बोले तो
4: हार्ट हार्ट
5: हमारा यार सौदा सौदा
4: ओहो
2: दोनों डील कर
3: टाइट वेरी टाइट

0: तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

स्वाभाविक है, कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: अल्फा
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारे
4: यार। तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन .com.au।
6: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

इतना सा बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।